0: Baiklah warga, akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda untuk hari ini. Hana berterima kasih ya, dan esok insya Allah masih ketemu kembali di Pesona Mandalika. Hana yang tugas siang hari ini langsung saja pamit mundur diri. Mujem mafkar DJ kalau ada salah kata. Wassalamualaikum, pirmile or namaste.
1: ये क्या लिफ्ट बीच में क्यों रोकती? Oh my god, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है.
2: अच्छा अच्छा बोलो बोलो प्यार है, मौ चांदी आला करिश्मा कपूर अच्छा, मौ गंदा आला शाहरुख खान अच्छा अच्छा.
1: और हिंदी कविता
2: डगर है
3: पैसा
4: है सोना
3: सोना
2: मंडलिका.